दिल तो निकली आवाज़ जदों हवावां च घुल जावे तां उदों रेडियो सिर्फ सुनिया नहीं महसूस भी किया जाता है। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, तुसीं सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मैलबर्न, तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल। उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोंगे। रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं, इह इक अहसास है जो जोड़दी है साडे ते तुहाडे दिल दी तार नूं। ते हरेक सोमवार वादे मुताबक असी आ गए हां तुहाडे नाल 2 घंटियां दी सांझ पाउण, जिस विच असी करांगे कुछ साडे दिल दीआं गल्लां ते कुछ तुहाडे दिल दीआं गल्लां, ते इन्हां गल्लां नूं अहसासां दे खंभ लावांगे असी सोहणे सोहणे मिठे मिठे प्यारे प्यारे गीतां दे नाल। तां फिर तैयार हो तुसी सोमवार दी दौड़ नूं थोड़ा प्यार, थोड़ी मस्ती ते थोड़ियां जिहियां रूहानी वाइब्स देण लई, क्योंकि जब तक असी तुहाडे नाल आ तुहाडा दिन सोहणा बनाउण दी जिम्मेवारी साडी है। पर हमेशा दी तरह प्रोग्राम दी शुरुआत करांगे एक असी शब्द दे नाल, सुणदे आ शब्द ते फिर करदे आ कुछ होर गल्लां बातां।